0: अरे देखो टाइम ट्यून।
1: माइक मैन रेडियो वर्कआउट मैन यू गो बाय माइक एंड वी आर गो ऑडियो राइट।

0: Give me Indian music, I want an Indian tune. Give me it, level.
1: फिर कोई
2: मुस्कुरा
1: फिर एक फूल खिला
3: अपना एफ लव यू मरान फरा
2: एफ लव यू मरान

0: Keep blazing, fellas. Keep blazing. Tune from Tuneville.
1: मेरे मन को किया तूने क्या इशारा
2: ऑल योर चोक ना शून लाइक दिस